0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाइफ।
1: यो हो रेडियो मध्य पश्चिम FM 91.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: रिवर्स ओसमोसिस तथा यूवी स्टेरिलाइज एंड ओजोनाइज प्रविधि प्रस्तुत राप्ती अंचल कई पहिलो ड्रिंकिंग वाटर
1: स्वर्गद्वारी ड्रिंकिंग वाटर
0: हाम्रा सेवाहरू
1: एक लिटर र बीस लिटर जारको व्यवस्था
0: अर्डर अनुसार खाली बोतलको उत्पादन
1: बीस लिटर जारमा होम डेलिभरी सेवा
0: सम्पर्क स्वर्गद्वारी ड्रिंकिंग वाटर पुरानो बस पार्क प्रोप्राइटर धर्मेन्द्र केसी फोन नम्बर 082-567-021 र होटल डाङगाई नजिक जीवन चौधरी मोबाइल नम्बर 98478-62-375
1: शुद्ध पानी पिउनुहोस् स्वस्थ जीवन जिउनुहोस्

0: అందంగా ఉండేది. మీరు ఎవరెస్ట్
1: UAA ప్రాప్త బానేశ్వర బహుముఖి క్యాంపస్ శాంతినగర బానేశ్వర కాఠమండూకు నయా భర్నా సంబంధీ సూచనా.
2: लामो शैक्षिक इतिहास भएको त्रिवेदीद्वारा संचालित बोर्ड परीक्षामा राम्रो रिजल्ट ल्याउन सफल क्यूएए प्राप्त यस क्याम्पसमा बिहानी समयमा बीबीएस बीए र बीएड प्रथम वर्षमा शैक्षिक सत्र 2083-84 लागि भर्ना खुल्यो.
1: साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वीकृतिमा बिहान समयमा कक्षा 11 साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युमेनिटिज कम्प्युटर साइन्स र एजुकेशनमा धमाधम भर्ना भइरहेको छ.
2: क्याम्पस लोकेशन काठमाडौँको तिनकुने गैरीगाउँ पेट्रोल पम्पबाट 200 मिटर भित्र बागमती पुल सँगै.
1: सम्पर्क बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पस शान्तिनगर काठमाडौँ. सम्पर्क फोन नम्बर 01-46-20-310
2: मोबाइल नम्बर 98-514-0-41-98 र 98-412-55-957.

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद करता सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्टेशन टाइम यदि तपाईं पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5684594 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ

वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा फ्री इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सबै कनेक्टेड।

आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 मेगाहर्ट्ज़।

राम राम मैगर कविला हुक्रा हार्दिक स्वागत बाद थारू भाषा के कार्यक्रम अपनक आवाज में पक्कभी मई बाटु अपनक माझ में उपस्थित हो सैकल बाटु शालिक राम चौधरी पक्कभी आशे हम उपस्थित हो सैकल बाटे हम अपनक आवाज लेकन यह समय में बिहीबार का दिन हम 2 बजे का मध्य

0: मैगर गपिल हाम्रो आफ्नो पाँचमा हाम्रो सुगर गीतहरूलाई अस्तिम्पी गीत सम्बन्धी आफ्नो हाम्रो अत्र बेला सुन्टीबाटी रेडियो मध्य पश्चिम 91.4 मेगाहर्जको कार्यक्रम आफ्नो आवाज सुन्टीबाटी पक्का फेरि हाम्रो प्रत्येक बिहिबारको दिन ऐना गर्थे दुई बजेको मध्य पश्चिम हाइलाइट स्थान छ करिब करिब हाम्रो तीन बजेसम्म रहना गर्थे पक्का फेरि हाम्रो थारू कनके अस्म कि फिर हमार घर आंगन में हाँ सकल बा पक फिर अगर तैयारी फिर अपनों कर करती हुई भी जस्ट लट्ठा पक फिर अतरा बला क्यों संगरी हम संपर्क में हाँ सकल बा तो हमारा स्वागत कर दारी। हेलो राम राम।
1: हेलो राम राम।
0: राम राम कहाँ से क्यों बोल ली?
1: राम राम मैं सिंगोरा से खुशी राम चौधरी।
0: सिंगोरा से खुशी राम चौधरी। अनि खुशी राम की हाल खबर का बा?
1: ठीक है बात सबको मजा बात
0: सबको ठीक बा ना
1: सबको ठीक बा मजा बात
0: आजकल तो पिठा पिसेना व्यस्त मे
1: पिठा हम पिजा पिठा
0: अस्तिम केक अगाडि उचार गर्ने
1: आफ्नो
0: गाउँठाउँमा अस्तिम केक कतिको मन
1: छ
0: ठिक भए आफ्नो घर अस्तिम के जस्तो मोटाउ घर जे छ कि
1: मटाउ घर मुटा सबैजना मटाउ गर्दै थिए जस्तो कोनो कोनो एक दुई घर मान्छे मटाउ घर नै सर्नारे छन् कि का उता पहिला पुर्खा तर सेला तर गाउँ
0: पहिला
1: को सिक्ना हो आफ्नो घर के सिक्ना हो औरो घर निस्ना कैसे कथका एक दुई घर सो तीन सो बटार बाट औरो ठरिका ओकरा बाट आफ्नो घर बनाइ छल मटाउ घर बनाइ छल भितामा सब मजा छ बनाएके ठीक छ
0: जस मजा से धूमधाम से मनी तिहार
1: धूमधाम से भाई फिर उठा
0: फिर उठा ना
1: बसने लम्मा लाइन रखा था ठीक हुए लागल बराबरी गाँव बाटी का हूँ
0: झिंगोरा तो धूर अलग भारी गाँव तो भाग
1: भारी गाँव बाटी का
0: यहाँ उचा छुट्टे रोड बा तो सब फिर और और फिर भाग और गाँव फिर भाग ना
1: गाँव फिर और नहीं था ये रोड छे से उचा रोड छे से टिकरा हो रोडक दक्षिण वाले दो चार घर वाला जी ताई से टिकरा हो साली को गनावा जे अब पहले से अब तो नहीं उचा वो गाता अपांग आप इसे और चारों ओर एक बार वहाँ दक्षिण वाले इसे कहाँ टिकते हो बने ये तो यहाँ तो सारे अब कठाव हो
0: ठीक बा कार्यक्रम सन्दर्भ बाटी हाम्रो फ्याप अपन फेप अपेक्षा का बागल से फिर अस्तिम के गीत गाडे जन जन सुम उम सुम सुगन्ध हुने र कर्का
1: अरे अस्तिम के आगे
0: अपनी निजुना त कहाँ हुन्छ र ल सुरु गरी उसो भए
1: हरि सर सर मै खोजनु हो मोरे हरि सर सर मै खोजनु हो मोर के हो राम सर के लगवा मोरे धनी के खालो किनाई ये हो राम सर के लगवा मोरे धनी के खालो किनाई गीत करैला हो मीठा हो भाता कब बासी मुर्गा दे जरवा खैबी कहीं था भात कब बासी मुर्गा दे जरवा
0: ठीक बा खुशी लागल आपन प्रतिभा फिर सुना दे सुगर गीत सुना दे इना दिन फिर अस्तंग समझती करबी अपन संग साथी न समझ सकती
1: सबसे पहला प्रथम तो अपने समझतो परिवार सब कुन समझती महीना खुशी राम चिन्ना निचिन्ना सब कुछ समझती
0: छुट्टी ना राम राम उहाँहरूलाई झिङौरा से खुशीराम चौधरी नियमित सङ्गरी फेरिट हामीलाई सम्झल र सुगर गीत फे सुनाके पक्का फे आप अपनाइसक्थे सुन्ने भए पाँच साठी आठ सय चौन्न
2: नम्बर डायल गरिकन अथवा आफ्नो हाम्रो सुन्टीभाटी रिडी मध्य पश्चिम 91 बुधा 4 मेगाहर्जको कार्यक्रम आफ्नो आवाज सुन्टीभाटी फेरि हाम्रो प्रत्येक बिहिबारको दिन एना गर्थे रिडी मध्य पश्चिम 91 बुधा 4 मेगाहर्जको कार्यक्रम रिदी मध्यपश्चिम 91 बुधा 4 मेगाहर्जको कार्यक्रम आफ्नो आवाज सुन्टीबाटी हाम्रो प्रत्येक बिहिबारको ऐना हाम्रो ऐना कर्थे आइसक्ने बाटी 082-5601054 नम्बर डायल गरिकन हाम्रो फेसबुक मसेज हाम्रो लाइक फे करल बाटी आफ्नो वाट्सएप हाम्रो आफ्नो कुरा कमेन्ट गर सिक्ने बाटी पक्क फे आफ्नो कुनै प्रतिभा सुनिना कार्यक्रम आफ्नो आवाज पकबरिडी मध्यपश्चिम 91 बुधा 4 मेघाजको कार्यक्रम अत्रबेला मैले प्राविधिक रूपमा साथ दिएबाट शान्त कुमार बुढा मगर अत्रबेला मैले साथ दिएबाट अत्रबेला क्यूसँग हाम्रा सम्पर्कमा आशयकलबाट उहाँ हाम्रो स्वागत गर्न तर्खरमा बाटी उहाँ स्वागत गर्दा हेलो राम राम
1: राम राम राम
2: राम राम कहाँ से के बोल्ले
1: करजाई
2: से छित्रु चौधरी छित्रु के हाल खबर कामा छित्रुजी
1: हजुर
2: सक्खु ठिक बानी
1: सक्खु ठिक बाटी हामीसँग भगवान बचिल्ला
2: भगवान बचिल्लाबाट अष्टिम के हेल्बा ओफे श्री कृष्ण के हाम्रो कृष्णको लग्न भगवान हिट श्री कृष्ण महाजा फे त उहाँ बचिल्लाबाट घर पर अनि श्री कृष्ण के आप हाम्रो पूजा गर्थे कहु आप अष्टिम की ऐटिबा अस्तिन्की आफ्नो गाउँठाउँको माहौल कसिन
1: बाजे
2: डर खैठ काल अस्तिन्की भेट्छन
1: आफ्नो
2: जस्तो अब कर्जाई त भारी गाउँ भयो नि त उटा एक घर जी ठकी दूर ठाउँ टिक्ना उसार छैन
1: यहाँ लगभग एक घर पहिला टिकट अब बर गाउँ होसे डान्से लोकतन्त्र गणतन्त्र होसे अलिक छारा अघिल्लो गाउँ ठाउँ जहाँ छ सहर बजार जहाँ छ का म होसे अखिन कर्जाइमा लगभग लगभग 10 घर टिक्छ
2: 10 घर भारी गाउँ त भारी गाउँ अलिक
1: तिन ठो टोल र
2: जस्तो अब जस्तो पहिलाको अनुजमा रह नि अपने बनिनाथ चित्र बनिनार छ नि र 5-4 देखेर हरेक चिज के चित्र बनिनार छ कि मतलब अस्कालिक जमाना अनुसार गर्थे कसिन गर्थ
1: अब एक दु तिन ठाउँ घर पहिलो जसिन भित्तामा होइन आफ्नै आफ्नो हातले आफ्नो कोर्ना गरेर देख्छु औरत त सब प्रकृति
2: जस्तो आजकल जमाना अनुसार डिजिटल जमाना
1: भिटो पात्रो बनाले
2: फ्लेक्स फोटो बनाएकन टिक्न उतामा संस्कार त अलिक हेरिती जाइटकन जस्तो है त न ठिक बा बिना फ्याप सुधारा पर्ना बा ठिक बा कार्यक्रम सम्झल बाटी आसका सुनैटी
1: दान लान अब सुन्न सुन्न हो अब दर्शन जाने जान्दाखेरि रेडी रेडी अब सोचेको चत्ती रोड किलो यसो अब सुनाइ फरेन जान्थे अब फोन लगाएर के त हो को भयो त नि तर सुनाल्यौँ गीत
2: ल सुरु गरेँ
1: सिरी सिरी हावा चल धानको त्यही लल सिरी हावा चल धानको त्यही लल सिरी सिरी हावा चल ढोकाले मायाल मै लगम बत्या ढोका देन मायाल मैले लगम बत्या ढोका देन मायाल गिर्दै एक छाउ गिर न मही सेना लैजाऊ साली आफ्नो बैठना ठाउँमा मही सेना लैजाऊ साली जानकारी गराए तु सब कुछ सुन्छ मध्य पश्चिम नि
2: हजुर
1: अब त्र धन झेल खेती हुइल कत्र जनता मूल कत्र हाम्रा दिदी बहिनी दादु भाइ बाजा भइसक्यो मूल नि पत्रा हुइल पत्रा घटना हुइल दुर्घटना बाढी गहिरोले उहाँसे जानकारी पैती पैती से हाम्रो अत्यार गर्ना नेपाली जीवानी का अत्यार कैसे वत्रा ध्यान क्षति लखो म यत्रा बुझावियर ओहो जैसी लखा ओसिके कतिवा त फेसबुकमा टिकटकमा कति रह जानकारी ऊ खेलाजी भन्थे क्या हाम्रो यत्रा क्षेत्र खतरा भएको छ नि त उहाँसे हाम्रो धेर खेलाजी मान्छे ओसि ध्यान क्षति हुइल हाम्रा देशमा ओ मै बहुत दुखी भएको थियौँ उहाँहरूलाई बहुत चिन्ता मन लगाएको थियौँ ओ कति आप आफ्नो विचार कावा निकलिन्
2: ल छुट्टी राम राम उहाँ र ल छेत्रु चौधरी कर्जाइ सम्झल र पक्कै आफ्नो उहाँ कटिहरूलाई कि जुन रसुवामा जुन बाढी पहिरो छ ओत्रा जनधनकै क्षति होरल पक्कै नेपाल रुइटी बाकरल एकदम प्रभावित रहल बा नेपाल कहपरल हाम्रो सबैजना एकदमै दुखी भएटी हाम्रो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर चाहटी हाम्रो कार्यक्रमकै तर्फसे रेडियो मध्य पश्चिमकै तर्फसे ओत्रा जनधनकै क्षति होरल जुन एकदमै जुन अपेक्षा अपेक्षित अनुसारकै मतलब जुन सोचलग्नी अनुसारकै जुन उचा बाढी पहिरो आइल ऊ कारणले फेरि उत्तरा जनधनकै क्षतिहरू हाम्रो ऊ अनुसार फेरि हाम्रो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर चाहटी एकदम हाम्रो फेरि दुखी बाटे आइसक्ने बाटे 082-5684 नम्बर डायल गरिकन अथवा बेला हाम्रो सुगर गीत त धर चाहटी गीत पास हाम्रो अपनक माझमा हाम्रो उपस्थित हुने बाटी कति रहनु तर अत्र बेला क्यूसँग हाम्रो सम्पर्कमा आसेकलबाट उहाँ स्वागत गर्दा हेलो राम राम
3: हजुर राम राम सर
2: राम राम कहाँ से के बोल्ले
3: दधिराम
2: चौधरी दधिराम के हाल खबर काबा
3: एकदम ठिक बा सर
2: कमर बाटी के
3: अखि ठ्याक्क भइसै हो र
2: भइसै हो न सबै भइसै हो अलिक मेन रोडमै बाटी कहाँ हो न
3: हजुर
2: अलिक मेन रोडमा बाटी कहाँ
3: हजुर हजुर
2: अरू सब ठिक बा अपना गाउँ ठाउँमा का अस्टिमकी आप अस्टिमकी फ्याइल कहुना
3: हजुर
2: आप अस्टिमकी फेर सुरु हो गेल कहुँ अपना गाउँ ठाउँकी अस्टिमकी के हाल खबर का बकनु का
3: एकदम ठीक ठाक भा आप अस्टिमकी आइटी भएको हो आप अस्टिमकी के तयारी चाहिँ कतिबाट दिदी बाबु आप बजार गएर ऐना कतिबाट अकालिक तयारी कतिबाट
2: अस्टिमकी के सामान अस्टिमकी के सामान यताउता लिए ऐना फेर बजारै परला
3: हजुर हजुर
2: ठिक बा कार्यक्रम सम्झल बाटी आज का सुनाइटी
3: मैं एक टुका गीत सुनाइ चाहे
2: ल शुरू करे
3: पीड़ा उनलाई कति होला आफन्तलाई सोची पीड़ा उनलाई कति होला आफन्तलाई सोची पीड़ा उनलाई कति होला देशै शोकमा डुब्यो आज आयो भोटेको सी देशै शोकमा डुब्यो आज आयो भोटेको सी देशै शोकमा डुब्यो आज आफन्तलाई सोची सम्झी बोलाउँछन् आँखा आफन्तलाई सोची सम्झी बोलाउँछन् आँखा आफन्तलाई सोची सम्झी कोही को पुछ्यौ सिन्दुरनी कोही को रिच्यो काका कोही को पुछ्यौ सिन्दुरनी कोही को पुछ्यो कोही को पुछ्यो सिन्दुर कोही को पुछ्यौ सिन्दुरनी कोही को रिच्यो काका कोही को पुछ्यो सिन्दुरनी कृष्णभीरको पहिरो पनि ठुलै गएको रहेछ कृष्णभीरको पहिरो पनि ठुलै गएको रहेछ कृष्णवीरको पहिरो पनि आफन्तलाई मात्रै होइन देशलाई पीडा भएछ आफन्तलाई मात्रै होइन देशलाई पीडा भएछ आफन्तलाई मात्रै होइन हजुर
2: हजुर लसुगर समसामयिक गीत फे सुनाडेली पीडा मैसे बाटी आप विशेष दुख व्यक्त करके फे का करना है
3: नजुगर
2: गीत सुनाडेली आपन संग साथी न सुन सकते राम राम उहाँ दधिराम चौधरी रामपुर केसँग रिहाबिट अखि चाहिँ भैसाई सुक्न बाटो कटल सुगर गीत सुनाके गेल अत्र बेर हम एक ठो गीत सुगर गीत सुनाइटी गीत पास आफ्नो माझमा उपस्थित हुने बाटे।

0: मै गरेको विधाको आफ्नक माझमा हाम्रो सुगर गीत हेरखले फेर से स्वागत भएको कार्यक्रम आफ्नक आवाजमा आफ्नक अत्र बेला सुन्टीबाटी रिडी मध्यपश्चिम 91.4 मेगाहर्जको कार्यक्रम आफ्नक आवाज आफ्नक सुन्टीबाटी पक्कफे आफ्नो कार्यक्रमकै पुछार पुछार म आशाकलबाटी पक्कफे आफ्नो विधा भएको जाइ पर्ना बिठा पक्कफे आप अस्तिम के फे आशाकल भएको हौ आफ्नो तयारी फे कति भी मजा से तयारी कर भी मजा से मनी भी सबको जान लाग ये अस्तिम की धीर धीर शुभकामना भाई ये अस्तिम की हमारा विशेष के हमारा श्री कृष्ण भगवान के हमारा पूजा करना करती देविका र वसुदेव के छावा श्री कृष्ण के हमारा पूजा करना करती अगर अपना ग्रह जीवन से अपना ग्रह मजा से ये गीत में हम जस्त हम थारू भाषा थारू गीत में हमारा मजा से हम सुन से वहां से फिर हमारा बुझ सकने भाई श्रीमद भागवत से अपना ग्रह सर सक अगर जीवनी हमारा पर फिर से ऊ सीख से फिर हम वहां से फिर धीर बाट हम सीख वकर जीवनी फिर हमारा धीर चीज हाम्रो शिखर शक्ति अस्त बटिटी गर्दै क्यु सँगै हाम्रो सम्पर्कमा आशाकलबाट उहाँ एकजना विदा हुन क्रमरले तर फेरि एकजनासँग हाम्रो हाम्रो सम्पर्कमा आशाकलबाट उहाँ भित्रदारी कैकन हाम्रो स्वचलबाट क्यु सँगै हाम्रो शङ्कर सम्पर्कमा आशाकलबाट क्युसँग राम राम
1: राम
0: राम राम कहाँ छ के बोल्ले
1: कृष्ण
0: चौधरी न कृष्ण चौधरी ल आफ्नो नाउँ व्यस्त परल ल धेरै धेरै शुभकामना बा श्री कृष्णको जन्माष्टमी शुभकामना बा ठिक बा कार्यक्रम हाम्रो पुछारमा फ्याए सकलबाट का सुने इतिहास
1: मही छोर्के जैन र कलशे मर्थे ऐलो काजे मही छोर्क जैन कलशे मर्थे ऐलो काजे दुबाटो म जैन कलश जैन रह कलशे दुबाटो म जैन रह कलशे मही से मया लगैलो काजे दुबाटो म जैन रलसे मही से मया लगैलो काजे सङ्घ जिउना सङ्घ मुना सङ्घ जिउना सङ्घ मुना कैगा बाजा कसम खैलो काजे सङ्घ जिना सङ्घ मुना कैगा बाजा कसम खैलो काजे
0: अत्र होना ला सुगर गीत सुना देली आफ्नो सङ्घ साथी न सम्झ सक्थे
1: अपने गाउँ सुन्थ्यो सबको सङ्ग्रह नभए मै कृष्ण चौधरी कहेको थिएँ नान छैन सङ्ग्रह नभए उहाँ खाइ थाहा भयो सङ्गत हो अन्तिममा शान्ति कालीमा सङ्गति बिदा हुँदै राम राम छ
0: राम राम उहाँहरूलाई कृष्ण चौधरी पक्कै सम्झल रह कफे आप हाम्रो पुछार पुछारमा आशाकलबाटी हाम्रो विदा हो के जाइ पर्ना बेठा आज हामीलाई झिङ्गो राशि खुसीराम चौधरी सम्झल रह उसनाको छेत्री चौधरी कर्जाइसे सम्झल रह उसनाको दधिराम चौधरी रामपुर से सम्झल रह उसनाको कृष्ण चौधरी पक्कुइसे हामीलाई सम्झल रह आप हाम्रो कार्यक्रमकै नियमअनुसार एकजनालाई विजेता फे पनि पर्ना बेठा आज हाम्रो खुशीराम चौधरी झिङ्गु राशि सम्झल र उहाँलाई विजेता बनाएकोलाई हाम्रो पक्कै कि फे दुःख नि मन बिख पर झिङ्गु राशि सम्झल र खुशीराम चौधरी आफ्नो बधाई बा आफ्नो प्राप्त करकले स्वर्गद्वारी वाटर सप्लायर्सको 100 रुपियाँ रिचार्जकार उसँग स्वर्गद्वारी वाटर सप्लायर्सको एक कार्टुन पानीकै व्यवस्था गरिदिएरले उहाँ से प्राप्त गरिरहेकोले उहाँको जीवन चौधरी उहाँ आफ्नो उहाँ से आफ्नो कुरा लिए जाने बाटे उसँग 100 रुपियाँ रिचार्जकार आफ्नो रेडियो मध्यपश्चिम के कार्यालयमा सम्पर्क गर्वी हुइठा त अत्र बेलासम्म कार्यक्रम सुनको साथ दिएले आफ्नो कुरालाई धेर धेर धन्यवाद बा अत्र बेला प्राविधिक रूपमा साथ दिएर हुइठा कार्यक्रमको हाम्रो अन्तिम पार्टी अत्र बेलासम्म सुनको साथ दिले सबको जानलाग धन्यवाद दिँदै म शालिक राम चौधरी बिदा हुन्छु रेडियो मध्यपश्चिम युनिटी रवि राम राम।

0: बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद करता फ्री इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड।
1: काठमाडौँ डायबिटिज एन्ड थाइराइड सेन्टर जावलाखेल ललितपुरमा कार्यरत मधुमेह थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप चन्द्र श्रेष्ठ घोराही 15 सडक विभाग रोड।

बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सोई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लगी एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड

हैशटैग आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज ही आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम FM 91.4 मेगाहर्ट्ज।

0: को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सोई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बायोनेट अब सब कनेक्टेड
1: बजाज आरी नेशनल फ्री चेकअप एंड सर्विस कैंप
2: फ्री सर्विस कैंप में दीने छूट तथा सेवा
1: सर्विस चार्ज में 50% छूट
2: इंजिन आयल में 15% छूट
1: टायर किंदा 10% छूट
2: पार्ट पुर्जा में 15% छूट
1: साथ ही निःशुल्क एफआई टेस्ट पनि गरिने छ
3: फ्री सर्विस क्याम्प यही भाद्र 21 गते देखि 26 गते सम्म रहनेछ
1: सुनेर होइन हेरेर पत्याउ बजाज स्पेयर पार्ट्स को पिंक स्टिकर हेरेर जिनेउन हो कि होइन छुट्याउ
4: थप जानकारी को लागि नजिकैको बजाज अटो विक्रेताकोमा सम्पर्क गर्नुहोस्
1: सम्पर्क ओम बाबा अटो प्राली बीपी चौक घोराही दाङ सम्पर्क फोन नम्बर 0825639 सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9803847761 9686 37244 र 9829167068

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट विटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोटो को डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी